नहीं माफ करना ये जिधर मिलना होता चलन दिल्ली नहीं है समथिंग कुछ ना कुछ तगड़बड़ है कोई गली मेहरबानी चलो खैर मेरा मकसद सी के थोड़े नाल सांझ पाला कि ये भाई दुखदाई घटना जिहड़ी है ये वापरी है एडलेड साढ़े गुआंढी मुल्क उत्थे गुरु घर नूं जिहड़ी है अग जिहड़ी है लगी है ते नाल ही नाल तुसीं नौजवानां नूं देखिया जी काफ़ी कुछ जिहड़ा होया जंतर मंत्र दे विच ते उत्थे लोग जिहड़े ने उन्होंने कहा भी भाई वो जिहड़ा धर्मेंद्र प्रधान है उत्थों अस्तीफा लै लिया आ पर एक धर्मेंद्र प्रधान का एक होर एक वीडियो जिहड़ा आ वो इत्थे घूम रहा काफ़ी जिहड़ा उसके बाद बयान आया कि मेरा अस्तीफा तो मोदी साहब तुसीं लै लिया पर ये मेरा तो कोई एडा कसूर नहीं सी इहदे च पर मैं हुण तुहाडे जिहड़े पोतले आ वह जरूर खोलांगा क्योंकि तुसी मैनू मोहरे कर दिता मेरा अस्तीफा तुसी लै लिया पर ये मेरे करके नहीं सी होया ये सरकार ने मैनू कहा सी तां मैं इदां कीता मैं लगता वो अपने इन्होंने गलों के आप ही फस रहा कि आप ही मन रहा है भी इदा होना है फिर अडानिया बानिया की भी गल की इन्हें कि भई मैं जिहड़े आ सारे चिट्ठे जिहड़े ने बाद खोलांगा एक पता नहीं कि सच्ची वीडियो है उसकी जो बनाई गई है जां किवें आ